सब सब धरती हल चल भाई साढ़े घरवार इं ऐसे दंत कलेश में खपियो संसार तह बिन सतगुरु को नहीं पहले प्रणहारा गह ऐसे खड़

0: संग हर दर्शन पाया सैन नाई उत्कारिया ओए कर कर सुनिया
1: कर कर किवें सुनिया गया हिर

देव पिया मानो के नाम जपण वालियां दे देवत, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राये, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रिसाए। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन होए ते भगत नामदेव दे प्यार वाला दूध नारायण ने पी के बख्शियां कीतियां। ते इसे तरह भगत नामदेव संतां दा संग करदे, नाम जपदे, परमात्मा नू याद करदे अपनी उम्र बितांदे गए। थोड़े जे वड्डे होए ते उस वक्त दे महान योगी, महान तपीश्वर जिन्हां दा इक पंथ चलदा सी, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए ते चल पे उन्हां दे

थोड़ी दूर बाहर स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है, मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया, देखिया भाई ए मेरे नाल जो चले

पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए, बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया है। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे न, अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परों, जन्म पाए किश पलो न कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे न, भाई सुख तां उना ही पाया है जिन्हां ने जपया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तां सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यों कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो, किन बिद रैन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े भाई के जब संग होती तब हूँ ना है प्यारी, कहत कबीर पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

तीन तिहारी तो ना पार पाइत है कागज दीप सब करके कागज दीप सब करके अरसा मंगल की मस्त है हो।

वो कम प्रयास करते हैं जिन्हां नूं कीती हुई बंदगी उत्ते विश्वास है वो बंदगी करके ये नहीं आखते बंदगी कीती ते मिले या कुछ नहीं लबों पे मुहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं चुकदा ताला उन्हां दे बुलां उत्ते लगा है पर अपने मन विच अपने प्यारे दा स्वास स्वास सिमरन करदे ने बंदगी करदे ने बंदगी कौन करदा है किन्नू उस उत्ते विश्वास है नहीं ते किसे नू की लोड़ है जे विश्वास नहीं ते कुछ नहीं बंदगी करता रहा बंदगी कीती है मिलिया कुछ नहीं अज मस्जिद विच नहीं जाना अज मैं नमाज नहीं पढ़नी अज मैं इबादत नहीं करनी क्यों इबादत क्यों नहीं करनी कई वरे इबादत कीती है बंदगी कीती है जे इना चिर बंदगी करके भी कुछ नहीं मिलिया तो फिर बंदगी किन्ना चिर कीती जानी है अपने घर विच आकड़ के बैठा है घर विच बैठिया बैठिया वो समा आ गया बाहर दियां दलीजां वल ध्यान पिया दलीजां विच बड़े सत्कार नाल अपना मूंह कुत्ता उस दियां दलीजां विच रख के बैठा है वाह बई वाह छम छम रोण लगा मन नूं बड़ी वड्डी सारी लानत पाई कहण लगा ये कुत्ता है तू इस नूं अपने घर विच रखे है ये तो खसम वाला खवाउंदा है तू इसका साईं खवाउंदा है पर जे तू अपने खसम की बंदगी विच रात जागिया है तो अपने आप नूं एडा वड्डा पीर सदाउंदा है आकड़ के अपने घर विच बह गया मैं बंदगी नहीं करनी जागया तो उसकी वफादारी विच है अपने मालक दी च तेरे नालों ये चंगा है तू ते रात किसे वेले सौ जांदा होवेगा पर ये कुत्ता तेरी वफादारी विच सारी रात जागदा होवेगा मन उत्ते बड़ी वड्डी ठोकर वजी राती जागे ते पीर सदा रात जाग के अपने आप नूं पीर सदवाउंदा है राती जागे ता पीर सदावे पर राती जागण कुत्ते मालक दा दर कदे नहीं छड़दे भावें सौ सौ खावण जुते करदा रखिया होया कुत्ता दुरकार के बाहर कढ दिंदे हां पर थोड़े समय तों बाद उन्हूं फिर अपनियां दलीजां विच वेखते हैं क्योंकि उस कुत्ते दा अपने मालक नाल अथाह प्यार है उसका नमक हराम नहीं करता जिसका खांदा है उसका हराम नहीं करता पर इंसान जो है जे जुगचारे आरजा होर दसूनी होए नवां खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए के मेरा नां चंगा बन जावे सारा नालों उच्चा मैं बन जावां चंगा नाउ रखाए के जस कीरत जग ले सारी दुनिया का जस मैं खट लवां पर गुरबाणी फैसला करती है जे तिस नजर ना आवई ता वात मैं पुछेगी जिन्ना चिर तू उसकी नजर थले नहीं है उसकी छतर छाया अपने उपर नहीं मनदा उन्ना चिर कुछ नहीं है तीर्थ वरत अरदान कर मन में धरे गुमान नानक ने फल जातते ज्यो कुंचर इसनान जिवें एक हाथी पवित्र जल नाल इशनान करके मन की पूर्ति उन्ना चिर नहीं जिन्ना चिर मिट्टी कट्टे दियां सुंडां भर के अपने उत्ते नहीं सुट लैंदा पौंक पौंक के रात गुजारन सिरे रूड़ियां सुते चलो बुलिया यार मनाला नहीं ते बाजी लेते अजे जित गई तू हार जावेगा दौड़िया।